0: छोड़ो हाथ छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे।

महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे

यह दोहा अनन्य प्रेम और एकांत भक्ति की पराकाष्ठा है। श्रोताओं, कबीर साहब अपने प्रभु से विनती करते हैं, नैन अंतरियाव तू, हे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, तू मेरी आँखों के भीतर आ जाओ, जो हो नैन झपे हूँ, और जैसे ही तुम अंदर आओगे मैं अपनी पलकें झपका लूँगा, अपनी आँखें बंद कर लूँगा। कबीर यहाँ आँखों को एक मंदिर या एक घर की तरह देख रहे हैं, जिसमें वे ईश्वर को बिठाना चाहते हैं। अगली पंक्ति में वे उस एकांत की शर्त रखते हैं, ना हो देखूं और को। वे कहते हैं कि जब मेरी आंखें बंद होगी और तुम अंदर होगे, तो फिर मैं दुनिया की किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा, मेरा ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, और ना तुझे देखने देहूं, ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। यह कितना अद्भुत बात है, यह कितनी अद्भुत बात है। कबीर चाहते हैं कि वह परमात्मा केवल उनका हो जाए और वे केवल परमात्मा के हो जाएं। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जब प्रेम गहरा होता है तो भीड़ जहर लगने लगती है। हम चाहते हैं कि बस मैं रहूं और वो रहें। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हमारी आंखें बाहर के चकाचौंध देख रही हैं, तब तक हम उस अंदर वाले को नहीं देख सकते। जिस दिन अपनी पलकें मूंद कर बाहर की दुनिया को ना कह देते हैं, उसी दिन वे हमारे नैनों के भीतर उतर आता है। मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए, क्या हमारे पास कोई ऐसा सत्य है जिसे हमने दुनिया के शोर से बचाकर अपने भीतर सहेज कर रखा हो। हम अपनी हर चीज़ का प्रदर्शन करने में लगे हैं। हमारी प्रार्थनाएं भी अब अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं। आज कोशिश कीजिए कबीर की तरह अपनी पलकें मूंदने की। बाहर बहुत शोर हैं, बहुत तमाशे हैं। थोड़ी देर के लिए दुनिया के लिए अंधे बन जाइए, ताकि आप उस अंदर वाले को देख सकें। याद रखिए, ईश्वर बाजारों में नहीं बिकता, वह तो आपकी आँखों के उस एकांत में मिलता है जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपकी तड़प होती है। उसे अपने भीतर कैद कर लीजिए, फिर आपको बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: शोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.

यह दोहा अनन्य प्रेम और एकांत भक्ति की पराकाष्ठा है। श्रोताओं, कबीर साहब अपने प्रभु से विनती करते हैं, नैन अंतरियाव तू, हे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, तू मेरी आँखों के भीतर आ जाओ, जो हो नैन झपे हूँ, और जैसे ही तुम अंदर आओगे मैं अपनी पलके झपका लूँगा, अपनी आँखें बंद कर लूँगा। कबीर यहाँ आँखों को एक मंदिर या एक घर की तरह देख रहे हैं, जिसमें वे ईश्वर को बिठाना चाहते हैं। अगली पंक्ति में वे उस एकांत की शर्त रखते हैं, ना हो देखूं और को। वे कहते हैं कि जब मेरी आंखें बंद होगी और तुम अंदर होगे, तो फिर मैं दुनिया की किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा, मेरा ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, और ना तुझे देखन दे हूँ, ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। यह कितना अद्भुत बात है, यह कितनी अद्भुत बात है। कबीर चाहते हैं कि वह परमात्मा केवल उनका हो जाए और वे केवल परमात्मा के हो जाएं। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जब प्रेम गहरा होता है तो भीड़ जहर लगने लगती है। हम चाहते हैं कि बस मैं रहूं और वो रहें। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हमारी आंखें बाहर के चकाचौंध देख रही हैं, तब तक हम उस अंदर वाले को नहीं देख सकते। जिस दिन अपनी पलकें मूंद कर बाहर की दुनिया को ना कह देते हैं, उसी दिन वे हमारे नैनों के भीतर उतर आता है। मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए, क्या हमारे पास कोई ऐसा सत्य है जिसे हमने दुनिया के शोर से बचाकर अपने भीतर सहेज कर रखा हो? हम अपनी हर चीज़ का प्रदर्शन करने में लगे हैं। हमारी प्रार्थनाएं भी अब अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं। आज कोशिश कीजिए कबीर की तरह अपनी पलकें मूंदने की। बाहर बहुत शोर हैं, बहुत तमाशे हैं। थोड़ी देर के लिए दुनिया के लिए अंधे बन जाइए, ताकि आप उस अंदर वाले को देख सकें। याद रखिए, ईश्वर बाजारों में नहीं बिकता, वह तो आपकी आँखों के उस एकांत में मिलता है जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपकी तड़प होती है। उसे अपने भीतर कैद कर लीजिए, फिर आपको बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हाथ।

का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: श्योर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.

0: अरे दिल को किसी के क्या तोड़ेंगे, फूल हमने तोड़ा।
1: अरे पाया जिसे दिलों का दुश्मन, उसे कभी ना छोड़ा।

0: एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज एट टचिंग।
1: Seven, six, five, four, three.

0: अच्छे हम अकेले
1: करें साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: क्या पतंगे चल सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

शर्म ना इसमें कीजिए। अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी, अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी।

0: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

0: पूरी होंगी उनकी सब फरमाइशें, एक भी हमसे न टाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: प्यार के कैदी जरा समझ जा।

0: क्यों है?
1: ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है।
0: अगर मुझसे प्यार होता तो यूँ न कहते।
1: तो क्या कहता?